0: एक नजरे।
1: मुआज़्ज़ज़ सामईन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद ये इरशाद फरमाया कि तिबयानल लिकुल्ले शैइन, के हर चीज़ का वाज़े बयान कुरान पाक में मौजूद है। इस पर हर मुसलमान का हमारा ईमान है, मगर इन में से कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, आम लोगों के लिए मुबहम है। यानी आम लोग कुरान पाक से इलम हासिल करना या कुरान पाक की जो आयात हैं, जो मसाइल हैं, उनको समझने की जसारत नहीं रखते। मसलन इबादात में से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को ले लीजिए। कुरान करीम में इन सब का हुक्म मौजूद है, मगर क्या कुरान पाक से इन इबादात की पूरी तफसील हम ले सकते हैं? अगर अहदीस को नाकाबिले एतबार मान लिया जाए तो फिर इन इबादात पर अमल कैसे होगा? क्योंकि इन तमाम इबादात की जो तफसील है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस में है। नमाज को ले लीजिए, अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, उस वक़्त कोई भी नमाज पढ़ना नहीं जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तमाम इबादात, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज और ज़कात हो, इन सारी इबादात का जो तरीक़ाकार है, जो तफसील है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की अहादीस को छोड़कर सिर्फ़ कुरान पाक से हम हासिल नहीं कर सकते। अगर नमाज पढ़नी है तो हुक्म तो नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। कितनी नमाज पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इन सब चीज़ों के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की हदीस शरीफ को मानना होगा। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म कुरान पाक में ईमान वालों को दिया, मगर रोज़ा रखना है और रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों के करने से रोज़ा फासिद होता है, और रोज़े के मुताल्लिक जितनी भी बाकी तफसीलात हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की अहदीस शरीफ में है। हज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया, हज के लिए अहराम बांधना है, तवाफ़ करना है, हज के जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, और जितना भी हज का सफ़र है, इसका ज़िक्र भी तफसील के साथ आपको कुरान पाक में नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की अहादीस शरीफ की तरफ ही हमें रुजू करना पड़ेगा। ज़कात का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर दिया, मगर ज़कात कितनी देनी है, किसको देनी है, किन चीज़ों पर कैसे कैसे ज़कात है, ये तमाम तफसीलात भी कुरान पाक में मौजूद नहीं। इसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की अहदीस शरीफ की तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये जो गुफ्तगू मैंने आपकी खिदमत में पेश की, हमें यानी कुरान पाक को कुरान मानने के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की अहदीस की ज़रूरत है, और फिर जो फ़र्ज़ इबादात हैं نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے کرنے کے لیے بھی بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم ان عبادات پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔